हमारे ये सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब और सलाम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है। सुनने वालों आज बुधवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322666611। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में महेंद्र कपूर जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर भजन महेंद्र कपूर जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको अब की बार ले चलते हैं ये सुंदर सा भजन की ओर।

सभी सुनने वालों की सेवा में प्रस्तुत की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हर सुबह ये प्रोग्राम सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। शीतल चौहान की आवाज में ये सुंदर सा भजन अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

चौहान की आवाज में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। अनूप जलोटा जी की आवाज में ये सुंदर भजन अब की बार आप सुनते ही रहना।

सज्जन अनूप जलोटा जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में अब की बार बेला जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

0: मुझे
1: और रेडियो वेव्स पे इसके जरिए ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बेला जी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन अभी आपने सुना। अगला भजन जो आज के ये प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो एसबीएस के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले हम आपको ले चलते हैं ये खास सुंदर भजन की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस के जरिए आप सभी जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

जैन की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में रोहन कपूर जी की ओर हम आपको ले चलते हैं, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे आरती भजन की ओर।

सभी सुनने वालों की सेवा में बस भी इसकी गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सिने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। चलिए फिल्म आवारापन जुजाना की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। अब आप बोली चलते हैं फिल्म का नाम

दी गई। रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना, मैं हूं आपका खिदमत गुजार अमीन और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में आपके बारे गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है इतनी सी बात, इतनी सी बात गाना का बोल।

तेरे मित्र की आवाज में। रेडियो SBS के जरिए ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए।

के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो बीठे की ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अब की बार तुलसी कुमार NKK की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। तुलसी कुमार NKK प्रोग्राम में।

तुलसी कुमार एन के की आवाज में गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई रेडी फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू की आवाज में गाना, और अब की बार फिल्म का नाम होगा इंडियन बाबू।

का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सभी कामों का आज के लिए। टेलीफोन नंबर है 0325656560। सोनू निगम एंड अलका।

पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना

जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। रेडियो स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। दुनिया के कोने कोने में सुनने वालों बस रोजाना रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, सभी को वेलकम। आप सभी आज भी अपना कीमती समय निकाल कर रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं। ऑनलाइन देश का सबसे खूबसूरत शहर

मॉल होता है, तरह तरह की दुकान इस मॉल के अंदर भी होता है, यानी कि ये होकतरेना।

गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ आप सभी को स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद पहला पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। तो चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का पहला गाना, जबकि 9:05 बैठी हो चुका है। वेलकम

गाना जो पेश की गए जब याद किसी की आती है, काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गए 9:00 प्रोग्राम में 12 मिनट व्यतीत हो चुका है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चलिए प्रोग्राम में फिल्म साउथन उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है लता जी की आवाज में और दनहाग शहर की रहने वाली कमला ने तार किया है और आज के प्रोग्राम में ये गाना सुनना चाहते हैं और किसी के याद में बस ये गाना पेश कर रहे हैं लता जी की आवाज में कि जिंदगी प्यार का गीत है उसको हरदम और हरदम ही गाना पड़ेगा। साउथन फिल्म का गीत बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस पेश की गई साउथन फिल्म का गीत। अभी आपने सुना जिंदगी प्यार का गीत है। देहात शहर से कमला कमला ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए और किसी के याद में आज के प्रोग्राम में ये गाना बस सुनना चाहते थे और इसी तरह से प्रोग्राम में पेश की गए। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर आप सुनते ही रहना। आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो के जरिए भी सुनाई देता है और वो भी प्रोविंसी यूट्रेख्ट यानी कि मिड नीदरलैंड में दूर दूर शहरों तक अपना मोटर कार में अपना घरों में आप हमारा ये प्रोग्राम को सुन सकते हैं और उसके साथ प्रोविंसी साउथ होलैंड में हमारा ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है। सुतमेर डेल्फ रेसवैक रेडर कैरक बारंद्रेख कपेला आन द एसल रोटरडम डेन हाग फोर्टबर्ग नोडोरप गौडा वाडिंगस्वीन और ऐसे बहुत से शहरों हैं जो साउथ होलैंड में होता है। वहां पर हमारा प्रोग्राम DAB प्लस द्वारा DAB प्लस रेडियो द्वारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं अपना मोटर कार में अपना घरों में मोबाइल टेलीफोन की जरिए मोबाइल फोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और वो भी रेडियो SBS.NL वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर पर जरूर आप जाइए इसी वेबसाइट पर और उसी वेबसाइट की जरिए हमारा ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। कुछ सुनने वालों है जो Spotify के जरिए भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। सभी जिस तरह से हमारा रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं सभी को वेलकम, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। ले चलते हैं रोटरडम शहर की ओर और रोटरडम शहर से तार किया है सीता। सीता आज पहली बार हमारा स्टूडियो की ओर तार किया है। प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं लेकिन काफी हिम्मत निकाल कर आज स्टूडियो की ओर तार किया है। कुछ बातें हुए हैं, कुछ हंसी मजाक भी हुए हैं और एक खास गाना मांग किया है रोटरडम शहर की रहने वाली सीता। तो चले मिलकर सुनते हैं फिल्म का नाम दिल एक मंदिर, उसी फिल्म का गाना लता जी की आवाज में।
1: अच्छा लगा कि आप सुन रहे हैं

पहली बार हमारा रेडियो SBS का स्टूडियो की ओर तार किया, गाना मांग किया। बस इसी तरह से प्रोग्राम में हिस्सा लेते ही रहना। सुनवलो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-6611। और ये टारगी नंबर आपको भी मिलेगा रेडियो SBS का वेबसाइट पर। और आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए भी आप ऐप कर सकते हैं।

Tansen. Usie film kai ganapis kia jaige. Uneiso ikset 1961 ka film hem. Mahendra Kapoor au leta jiki avas me aur India Bharat Desh Noida se. Anuresh gana mang kia hai aaj ki program me. Ek bari hi खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आज की प्रोग्राम में मांग किया है, तो चले मिलकर सुनते हैं महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में।

संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का नाम 1961 का फिल्म, 1961 का फिल्म, महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। और गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है इंडिया भारत देश नोएडा से अनुरेश, ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो इसी तरह से रेडियो SBS की जरिए पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है पूरा परिवार को, और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहे।

0: में कुछ खबरें की ओर हम आपको ले चलते हैं। हेडलाइंस न्यूज आपके लिए पेश होगा और साथ ही साथ देखा जाए कहां कहां पर हॉलैंड देश के अंदर में ट्रैफिक भी है, जरूर आप सुनते ही रहना।
1: दिस इज एडो पीटर्स मेट द हाफपॉइंट ऑफ द रेडियो न्यूज़ ऑफ रेडियो SBS। Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de straat van Hormuz voor de scheepvaart. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Munster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatformvoorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Om het personeelstekort het hoofd te bieden zetten steeds meer bedrijven in op automatisering. Dat is volgens het CBS een omslag omdat vorig jaar bedrijven nog meer vrije dagen of hogere salarissen boden om personeel te werven. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is het nog wat drukker. Daar staat file tussen Den Hoorn en knooppunt Hoogvliet, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 10 minuten vertraging na een ongeluk. Ook daar is de rijbaan weer open. En er zijn nog steeds problemen op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is afgesloten. Dat veroorzaakt vertraging vanuit Den Bosch ongeveer een half uur en vanuit Tilburg nu een uur. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Sangeet Bhari Station, je hier Radio SBS. Radio SBS. Radio SBS.
0: सर ही 9:00 है, प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है। आज का मौसम जिस तरह से आपने सुना, बदली बदली सा मौसम है, कभी अंधेरा मौसम, बादल छाया हुआ मौसम, कभी धूप का मौसम और कभी कभी रिमझिम बारिश का मौसम और कभी कभी जोर तोर से बारिश होने वाले हैं। बस आज का मौसम इसी तरह से रहेगा। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम जो है हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक। और बहुत से सुनने वालों, हजारों हजारों सुनने वालों न सिर्फ हॉलैंड देश के अंदर में लेकिन हॉलैंड देश के बाहर देश विदेश में भी काफी सुनने वालों ये प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। पुरानी नगमे जो इस प्रोग्राम में, सिर्फ पुरानी नगमे इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और सिर्फ पुरानी नगमे आप मांग कर सकते हैं। सुन वालों, एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है, मिलन सॉइड पार्क डेन हाग में इस साल होगा 21, 22 और 23 अगस्त। अपना डायरी, अपना अजेंडा में जरूर नोट कीजिए, 21, 22 और 23 अगस्त, 21, 22 और 23 तारीख अगस्त मिलन होगा सॉइड पार्क डेन हाग शहर के अंदर में। 3 दिन लगातार हंगामा ही हंगामा। सभी इंफॉर्मेशन इन्फो के लिए मिलन समर फेस्टिवल .nl, मिलन समर फेस्टिवल .nl वेबसाइट पर आप जाइए। और जब भी आप एक ग्राम भाड़ा पर लेना चाहेंगे, स्टेंट भाड़ा पर लेना चाहेंगे, तो जरूर इसी वेबसाइट की जरिए आप कॉन्टेक्ट कीजिए और इसी वेबसाइट की जरिए अपना टिकट भी आप खरीद सकते हैं। 21, 22 एंड 23 अगस्त मिलन सॉइड पार्क डेन हाग में बस होगा इस साल। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में होगा और गाना का बोल यही है तमन्ना। महेंद्र आम्स्टरडम शहर से भी टार किया है महेंद्र, और महेंद्र भी गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हमारा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। महेंद्र आपको भी शुभ दिन, हेल खुद मोर्ख। लीजिए आपकी मांगी हुई गाना, बस पेश किया जा रहा है, यही है तमन्ना।

यही है तमन्ना मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई और खास तौर पर आम्स्टरडम शहर से महेंद्र ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। शुभ दिन आपको पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना आम्स्टरडम शहर के अंदर में। काफी रिएक्शंस भी आते रहते हैं हमारा रेडियो SBS का ऐप के जरिए। सुनने वालों बस अपना अपना रिएक्शंस देते हैं, सुनने वालों भी यही कहते हैं कि सुनने वालों जो है रेडियो SBS का कितनी खूबसूरत गाने आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में मांग कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।

आते रहते हैं, तो चले सुन वालों की मांगी हुई गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुन वालों की सेवा में। उत्तराखंड शहर की रहने वाली सपना, सपना स्पेशल गाना मांग किया है आज की प्रोग्राम में, तो चले मिलकर सुनते हैं। एक काफी पुरानी फिल्म का गीत, बस उत्तराखंड

रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई और खास तौर पर गाना को मांग करने वाली थी यूत्रक्ट शहर की रहने वाली सपना। सपना स्पेशल गाना समवन स्पेशल के लिए बस मांग की आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। देश विदेश में भी काफी सुनने वालों हमेशा और रोजाना हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और आज की प्रोग्राम में मॉरिशियस से दुष्यंत जिंगरी एक गाना मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में। चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं फिल्म दिल में फिर याद किया मोहम्मद रफी मॉरिशियस का रहने वाला दुष्यंत जिंगरी का मांगी हुई गाना।

दिल ने फिर याद किया फिल्म का नाम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई और खास तौर पर मॉरिशियस से मॉरिशियस देश से गाना मांग करने वाला था दुष्यंत जिंगरी ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया जो आप सब ही सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। दुष्यंत शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और देखा जाए देनहाग शहर से तार किया है AG ने तार किया है और ये गाना लता जी की आवाज में सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम द ट्रेन।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म का नाम द ट्रेन 1970-1987 का फिल्म किस लिए मैंने प्यार किया स्टूडियो की ओर तार किया देनहाग शहर से एजी ने तार किया और ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया एजी आप गिटार के लिए भी लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना सुन बोलो हमारा दे अभी जो है जो खासतौर पर मिड नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ होलैंड में जोर तोर से काम कर रहे हैं हाँ बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो डे आ बी प्लस रेडियो के जरिए हमारा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में ये प्रोग्राम जो सुनाई देता है और खासतौर पर इंटरनेट के जरिए भी बहुत सी सुनने वालों बस हमारा ये प्रोग्राम को सुनते हैं जिस तरह से देनहाग शहर के अंदर में मालती भी तार किया है और मुझसे कहा यह है बधेल एरक द्रुक हाँ काफी सुनने वालों बस तार कर रहे हैं अपना अपना गाना को मांग कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में मालती एक बड़ी ही खूबसूरत गाना मांग किया है लता जी की आवाज में और गाना का बोल है प्यासा मेरा दिल कितने ही शाम से देनहाग शहर की रहने वाली मालती ने मांग किया है उनको ये गाना बहुत पसंद है

तो चले प्रोग्राम में सुर वालों की ये मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। और ये गाना बस पेश किया जा रहा है फ्रैंकराइक की रहने वाली अनुष्का, अनुष्का के तरफ से अपनी प्यारी प्यारी बेटी तारा के लिए। और ये गाना जो है एक फरमाइश के रूप में बस पेश किया जा रहा है फ्रैंकराइक की रहने वाली अनुष्का के तरफ से अपनी प्यारी प्यारी बेटी तारा के लिए, जिनकी आज 18 फरियादा है। तो अनुष्का अपनी प्यारी प्यारी बेटी तारा के लिए ये गाना पेश कर रहे हैं। आज का दिन ना जाने क्यों अच्छा लगता है, आशा भोसले की आवाज में। और ये गाना जो है एक फरमाइश है, फरमाइश के रूप में बस पेश किया जा रहा है आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में।

लगता है आशा जी की आवाज में गाना बस पेश की गई आज की प्रोग्राम में, और खास तौर पर फ्रांक रे की रहने वाली अनुष्का के तरफ से अपनी प्यारी प्यारी बेटी तारा के लिए गाना बस पेश किया है आखिरी फरियादा के मौके पर। बस रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से भी तारा बधाई हो, शुभकामनाएं हो, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और ये गाना फरमाइश के रूप में आज की पुरानी फिल्म संगीतों का प्रोग्राम में बस पेश की गई है। 10:13 वैदित हो चुका है, 13:13 काफी सुनने वालों है जो हमारा रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी तार कर रहे हैं। 0332-66-66-11 रेडियो SBS का स्टूडियो और रेडियो SBS का ऐप नंबर होता है। जिस तरह से सूरीनाम देश से भी तार किया है सूरीनाम पारामारिबो से हेलन, हेलन भी हमारा प्रोग्राम सूरीनाम देश में हमेशा और हमेशा सुनते हैं। तो गाना आज के प्रोग्राम में हेलन ने मांग किया है महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में नागिन, फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है महेंद्र कपूर।

0: गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए, फिल्म का नाम नागिन, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए सभी शुद्ध वालों की सेवा में। और खास तौर पर सूरीनाम पारामारिबो से हेलन, हेलन ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो रेडियो SBS की जरिए बस पेश की गई है। हमारा रेडियो SBS का ऐप पर तार किया और खास गाना की गुजारिश किया, इसी तरह से बस पेश की गई है। हेलन आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 10 मिनट बाकी है सुबह 10:30 में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश होगा 1960 का फिल्म चौधरी का चांद फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में मांग करने वाली है। लिम्बर्ग की रहने वाली इरेना की खास मांगी हुई गाना प्रोग्राम में बस पेश किया जा रहा है।
1: चौधरी

और रेडियो SBS के जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश की गई। और खास तौर पर लिम्बर्ग से खास तौर पर इरेन ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश की गई है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। हमारा प्रोग्राम भी एदे शहर में विमला मोहन भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। विमला मोहन ऐप द्वारा भी खबर किया है कि हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और हमारा पूरा टीम को भी एक शुभ दिन पेश किया है। चले फिल्म दोस्ती, उसी फिल्म का एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। और फिल्म दोस्ती का एक बड़ी ही खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी की आवाज में मांग करने वाली है लेडीस्ताद शहर की रहने वाली शलिनी जगई खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में।

फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। सर ही 10:00 प्रोग्राम में 2 मिनट व्यतीत हो चुका है हॉलैंड देश के अंदर में। आप सभी जोर तोर से रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को स्वागत किया जा रहा है। सुनवालों आपको खबर किया जा रहा है कि आने वाले वीकेंड शुक्रवार 5 और शनिवार 6 तारीख जून मिलन होने वाले हैं ऑल टुगेदर फेस्टिवल बारन में, यहाँ उत्तराखंड की बिल्कुल करीब में एक शहर होते हैं बारन, उसी शहर में हर साल की तरह इस साल भी फॉर द फीरन ट्विंटक्स तक मिलन होने वाले हैं ऑल टुगेदर फेस्टिवल बेकिंग टाउन बारन में, जहां पर तरह तरह के पोडियम प्रोग्राम रहेंगे, बहुत से म्यूजिक ग्रुप रहेंगे, म्यूजिक ग्रुप के साथ ढेर सा क्रैम्पियस स्टैंड्स यहां पर रहेंगे, खाने पीने के लिए बहुत से सामान भी रहेंगे। और आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है शनिवार 6 तारीख जून शाम में 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक 2 घंटा लगातार म्यूजिक फॉर्मेट से एक्सप्रेस यहां पर रहेंगे मैट लेडी संजना मुका एंड लाकाबोई मिस्टर ब्लैक। तो जरूर आइए, ग्रेटिस एंट्री ग्रेटिस पार्किंग फ्री पार्किंग है और फ्री एंट्री जो होते हैं आप हर एक के लिए। आने वाले वीकेंड शुक्रवार 5 तारीख और शनिवार 6 तारीख जून ऑल टुगेदर फेस्टिवल मिलन बारन पेकिंग टाउन में। सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है ऑल टुगेदर फेस्टिवल .nl ऑल टुगेदर फेस्टिवल .nl। तो चलिए सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। अब की बार हम आपको ले चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। इन दिनों बहुत से सुनने वालों देश विदेश से हमारा रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी तार कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से देखा जाए अनूप ने तार किया है, कुछ बातें हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दिया है और अनूप एक गाना सुनना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से तार किया है सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में। तो लीजिए अनूप आपकी मांगी हुई गाना बस पेश किया जा रहा है तार करने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद,

बेटे फिल्म का नाम सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। ऑस्ट्रेलिया से तार किया हमारा रेडियो SBS का एप की सर ये अनूप और अनूप ये खास गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग किया और इसी तरह से पेश की गए आप सब ही सुनने वालों की सेवा में। अनूप आपको भी शुभ सुबह शुभ दिन, हो सकता है वहां पर शायद रात्रि की समय होगा लेकिन फिर भी एक शुभ रात्रि शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, बहुत से सुनने वालों है जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं। चले गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पाकिस्तानी फिल्म आईना, उसी फिल्म का गाना मांग करने वाली है देनहाग शहर की रहने वाली सिंथिया सुखू। सिंथिया सुखू अपने प्यारा प्यारा पति के लिए हैंक हसन खान के लिए मांग किया है ये खास गाना।

मुझे दिल से ना भुलाना चाहे रोके ये जमाना। मेहनास आलमगीर और साथियों के आवाज में पाकिस्तानी फिल्म आईना का गीत पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग करने वाली थी सिंथिया सुको अपने प्यारा प्यारा लीफा लीफा मान हैंक हसन खान के लिए बस ये गाना प्यार मोहब्बत के साथ बस पेश किया है। मुझे दिल से ना भुलाना चाहे रोके ना ये जमाना। शुभ दिन पेश किया जा रहा है सिंथिया और हैंकुन। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। ब्रेडा शहर में हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं रिकार्डो गफूर खान। ब्रेडा शहर के अंदर में रिकार्डो गफूर खान हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं और आज के प्रोग्राम में गाना मांग किया है और वो भी लता जी की आवाज में। फिल्म का नाम है खानदान, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। ब्रेडा शहर से रिकार्डो गफूर खान ये गाना को मांग किया है।

लता जी की आवाज में बस पेश की गई खानदान फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता जी की आवाज में तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा। और खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया खास तौर पर ब्रेडा के रहने वाला रिकार्डो गफूर खान ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए। रिकार्डो शुक्रिया। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना ब्रेडा शहर के अंदर में। एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा।

फिल्म का गीत आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में पेश किया जाएगा। बहुत से सुनने वालों और भी तार किए थे स्टूडियो की ओर, लेकिन सभी हो गया है पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक पेश किया जा रहा है। तो एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा। जीवन मृत्यु फिल्म का नाम है, लता जी की आवाज में। और हमारा लिस्ट की ओर देखा जाए तो आम्स्टरडम वेस्ट से पूजा ने तार किया है और ढेर सा कॉम्प्लीमेंट्स दिया है हमारा प्रोग्राम के बारे में, रेडियो SBS के बारे में। और एक खास गाना सुनना चाहते हैं आज की प्रोग्राम में, तो लीजिए पूजा आपकी मांगी हुई गाना बस पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में।

गाना पेश की गई जीवन मृत्यु 1970 का फिल्म 1970 का फिल्म का गीत पेश की गई लता जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना आम्स्टरडम वेस्ट से, खासतौर पर पूजा ने तार किया और पूजा ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। और इसी तरह से आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत बस पेश की गई है। वैसे आज के प्रोग्राम में काफी नए लोग भी तार किए थे, गाना मांग किया आज की प्रोग्राम में, तो इसका मतलब होते है कि हमारा रेडियो SBS का एप अच्छी तरीका से भी काम कर रहे हैं। इसलिए काफी सुनने वालों है जो रेडियो SBS का एप भी जरिए तार किया, और खास तौर पर देश विदेश से भी सभी को शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सभी हमारा ये प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हर एक को बस खबर करते ही रहना। वैसे हमारा रेडियो SBS का ऐप पर 24 आवर्स यानी कि 24 घंटा लगातार सुनने वालों ऐप करते रहते हैं, और नए नए लोग रोजाना हमारा ऐप पर आते रहते हैं। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। और आपको मालूम होना चाहिए रेडियो SBS का ऐप के जरिए आप हमेशा तार कर सकते हैं, ऐप कर सकते हैं, और अगर आप ऐप करना चाहेंगे तो हमारा रेडियो SBS का वेबसाइट पर आप जाइए radio.sbs.nl, अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर पर। कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी रेडियो SBS के जरिए, जरूर आप सुनते ही रहना ये प्रोग्राम। हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

खासतौर पर गाना पेश की गई शान और शरिया घोषाल की आवाज में। शान और शरिया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेस में इसकी जरिए शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 2-3-2-65-65-60। कुमार सानू एन अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का खास प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल।

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले मिलकर अरिजीत सिंह की आवाज

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज और उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू जी की आवाज में।

की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई नजर फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, चलिए प्रोग्राम में आपकी बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। हम आपको ले चलते हैं आपकी बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए, और वो भी अरिजीत सिंह की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए खासतौर पर अरिजीत सिंह की आवाज में गाना भी आपने सुना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में के एन सुनिधि चौहान की ओर हम आपको ले चलते हैं।

uit de film No Entry. KK en Sunidhi Chauhan की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में. चलिए प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है.

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और अलका जी के आवास में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म

रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। सानू जी की आवाज में जिंदगी एक छाव फिल्म का नाम है और उसी फिल्म से ये गाना पेश किया जा रहा है कुमार।

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा तार कर सकते हैं। कुमार सानू और अलका की आवाज में आपकी बार ये गाना, फिल्म का नाम यस बॉस,

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना और कुमार सानू जी की आवाज में आज की प्रोग्राम में पेश किया।

सभी सुनने वालों की सेवा में ये दूरियां गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई, फिल्म का नाम था लव आजकल। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बेनी दयाल और शरारा पंडित की आवाज में ये गाना।

सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो बैठे किए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले हम आपको ले चलते हैं सोनू निगम की ओर आज की इस प्रोग्राम में। लव इन नेपाल फिल्म का नाम सोनू निगम प्रोग्राम में।

सोनू निगम की आवाज में ये गाना बस आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था लव इन नेपाल। उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के ये प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। चले प्रोग्राम में शान की आवाज में शान की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

लोकप्रिय बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में शाम के बाद अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में एक और खूबसूरत सा गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। क्यों?

रेडियो एस बी एस के जरिए किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। किशोर कुमार के आवाज में ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो एस बी एस के जरिए जो पेश की गई है मोहम्मद रफी की आवाज में।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। असरों मीठे गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है और रेडियो SBS की जरिए जो सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। लता के बाद मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में

गाना बस पे इसकी गई है। अब की बार मुकेश जी की आवाज में फिल्म कहानी किस्मत की है। उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है द माइटी मुकेश की आवाज में।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था कहानी किस्मत की। चलिए आशा जी की आवाज में अब की बार ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आज की इस पुरानी नखमे की खास प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना।

द नाइटिंगेल ऑफिशियल आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक कामों काज के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-25-65-65-60। चले प्रोग्राम में किशोर एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। आई द फिल्म कर्स 1980 का फिल्म 1980 का खास फिल्म का गीत आप सभी सिरे वालों की सेवा में पेश की गई है। मुकेश एन लता अब की बार प्रोग्राम में। ये शमा ये खुशी बोलो जी बोलो जी, मुकेश और लता जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

ये शम ये खुशी, बोलो जी मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नखमे, पुरानी फिल्मी गाने आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। सभी हिट गाने, सभी हिट सॉन्ग्स इसी रेडियो स्टेशन के जरिए हमेशा पेश किया जा रहा है, संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। ये तोहफा तुम्हारे प्यार का, आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार होगा, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में

0: किशोर कुमार की आवाज में गाना पेश की गए गोरी ओ गोरी। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl है। किशोर कुमार के बाद मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से, बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा,
2: अरे जा जा
3: जा जा जा।

मचल कर नाच जाती है तो धड़कते दिल से मेरे मद भरी आवाज आती है। ए, ए, ए, ए, जा जा अरे जा जा जा जा जा रे जा जा।

शराबी नैन के प्याले के दिल का हाल कह देते हैं दोनों ये हिम्मत वाले। नहीं डरते किसी से जीत कर भी हारने वाले, कयामत की नजर रखते हैं लेकिन ताड़ने वाले। जा अरे जा जा जा रे जा।

0: जा जा जा जा जा रे जा जा जा रे तुझे हम जान गए
1: जा जा जा रे तुझे हम जान गए।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशिली करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमा, दिस इज यू आर जे अंशिली करमलाल, यू वार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030 262 66 11. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030 265 65 60. Het eerste liedje van vandaag is...

मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आपने सुना ये बेहतरीन गाना मुकेश जी की आवाज में फिल्म श्री 420 से, और अब आप सुनिए फिल्म आवारा से। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की, लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए बेहतरीन गाना।

पहला प्यार अरमान मलिक की आवाज में आपने सुना फिल्म कबीर सिंह से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में फिल्म आजाद से है। लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए कितना हसी है ये मौसम।

Radio SBS luister je via de website www.radiosbs.nl. Wilt u reageren, kan het altijd. Bel maar gerust naar de studio met 032-62-66-11. En voor alle andere info kun je altijd bellen met 032-65-65-60. Aage bhi jaane na tu, piche bhi jaane na tu. Jo bhi hai, bas yahi ek pal hai. आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म वक्त से, और अब आप सुनिए फिल्म आज का अर्जुन से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गोरी है कलाइयां, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां।

फिल्म गुड न्यूज से आपने सुना बी प्राक की आवाज में माना दिल गाने के बोल थे, और अब आप सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आपने सुना मन्ना दे की आवाज़ में बेहतरीन गाना फिल्म सीमा से, और अब आप सुनिए आतिफ असलम की आवाज़ में। गाने के बोल है तेरा हुआ और फिल्म का नाम है लव यात्री।

ये लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे। गीता दत्त की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म आर पार से। ये है प्रोग्राम गीतों के लहर रेडियो SBS के जरिए से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। गाने के बोल है निमोड़ा निमोड़ा। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुनिए ये बेहतरीन गाना।

दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। राम राम, नमस्कार और सलाम वालेकुम सुनने वालों, आप सुन रहे हैं रेडियो SBS और मैं हूं आपका सेविका नीता।

साथ होगा 6 से 9 बजे तक। छह बजकर 4 मिनट गुजर गए हैं सुनने वालों, यह है स्टूडियो टाइट।

कुछ कहना है या बात करना है या एक गीत मांगना है तो आप जरूर तार कीजिए। हमारा तार का नंबर है 03226 66 11।

आप भी तार कर सकते हो और जरूर बताना आप कहाँ से तार किया और आप गाड़ी में हो या घर पर हो। उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर हो क्योंकि बारिश खूब हो रही है।

और आप जब भोजन करते हो स्वादिष्ट भोजन कीजिए, स्मार्क लगाइए। और यहां से हम आपको ले चलते हैं अपना पहला नगमा की ओर, और आपको सुनाएंगे महेंद्र कपूर।

चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. फिल्म का नाम है गुमराह. द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर.

0: बदल जाए अगर माली। महेंद्र कपूर के वास में बहारें फिर भी आएंगे फिल्म का नाम है।
1: फिर कह दो मुझे शर्मा के

0: एक बार जरा फिर कह दो।
1: कहो ना
2: दीवाना।
1: फिर कहो
2: दीवाना।
1: फिर कहो
2: दीवाना।
0: हेमंत कुमार और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है बिन बादल बरसात।

देखो हमें बार बार हो न जाए प्यार, प्रीत न जाने रीत। और आपको सुनाए द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी, फिल्म आवम।

रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले और किशोरदा के वास में फिल्म बरसात की एक रात, द मैन विद द डायमंड वॉइस, मोहम्मद रफी।

0: यमुना चौगल खाय गोर तर बाग गोर तर बाग गोर तर बाग
1: मन्ना डे के वास में सुनने वालों आधी रात की बाद फिल्म के नाम है। इस बार आप सुनिए चांद और सूरज, रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले के आवाज में।

और उनकी प्रीत पुराना रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले, फिल्म चांद और सूरज। हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम है एक सपेरा एक लुटेरा, द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी।

0: मैं हूँ एक पागल प्रेमी,
1: मेरा दर्द
0: न कोई जाना। श्रीमान फंतोष के फिल्म का नाम है सुनने वालों, और आपको सुनाए किशोरदा। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म लुटेरा से निकाला है ये गीत।

को कहो रुकिए जरा। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर के आवाज में, फिल्म का नाम है लुटेरा। इस बार सुनने वालों तलत महमूद।

महबूब है बेमिसाल द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और लता मंगेशकर के वास में फिल्म आए दिन बहार का। फिल्म आखिरी खत और आपको सुनाएगी भूपिंदर सिंह।

द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अफसाना। इस बार फिल्म आई दिन बहार की द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में और महेंद्र कपूर साथ दे रहे हैं।

0: कपूर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर के वास में
1: हमसे प्यार करो
0: इंतजार करो आए दिन बाहर की

इंद्रनील रॉय के आवाज में सुनने वालों आपने सुना, इस बार निजाम आपको सुनाएगी। एल्बम का बोले 14 सुपर शो।

0: साजन
1: नदीम खान के आवाज में
0: मेरे साजन
1: मेरा दिल भी कितना पागल है
0: मेरे साजन
1: एल्बम का बोले 14 सुपर सोल्स वॉल्यूम 2
0: मेरे साजन।

0: वागिद हुसैन के वास में एल्बम का बोले 14 सुपर सोर्स वॉल्यूम 3।
1: आज थोड़ी सी जुर्रत थोड़ी सी शरारत कर रहे हैं हम तुमसे, इजहारे मोहब्बत कर रहे हैं हम।

0: किसी और को ना चाहे मेरी सिवा। अमरजीत जयकार।
1: रहे हैं हमारी धड़कनों में तुम्हारी मोहब्बत के परवाने। तुम जब हमें उन नजरों से देखते हो, दिल की कलम से हम लिखने लग जाते हैं आशिकी के कई अफसाने।

0: जन्म जन्म का साथ है
1: तुम्हारा
0: हमारा। संजय जोधा के वास में सुनने वालों,

0: जय जोरहाट सुनने वालों, हम यहाँ से बढ़ते हैं अपने आखिरी नगमा की ओर।
1: इश्क मोहब्बत की बातें कभी कभी समझ नहीं आती, तुम्हारी यादों के बिना रात गुजर नहीं पाती।
0: अर्पिता मुखर्जी की आवाज में। हाँ सुनने वालों, हमारा साथ रहा। से 9 बजे तक
2: तेरी गलियों से हम तो गुजरने लगे, तेरी गलियों से हम तो
0: 9 बजने में 4 मिनट बाकी है सुनने वालों। का प्रोग्राम आपने सुना और आशा उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। साथ देने के लिए शुक्रिया।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो.